0: This is 7HR River on DAB+. The biggest songs from the 70s to now continue soon.
1: क्या आप बेहतर करियर की तलाश में हैं? योग्यता से कहीं अधिक वो नौकरी पाने का वास्तविक मौका जो आप वास्तव में चाहते हैं? AAS ऑस्ट्रेलियाई शैक्षणिक समाधान ये उद्योग प्रशिक्षण और बेहतर कार्य अवसरों के लिए आपका मार्ग है. ऑस्ट्रेलियन अकेडमिक सॉल्यूशंस अनुकूलित समाधान प्रदान करता है. सुरक्षा, निर्माण, यातायात नियंत्रण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ और आतिथ्य सत्कार बस कुछ ही नाम है. आइए और CBD में 45 मुरे स्ट्रीट पर लेवल 3 पर हमसे मिलें और आज ही सही कौशल के साथ तेजी से नियुक्ति पाएं.
0: जस्ट सर्च ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक सॉल्यूशंस.
2: ऑडियो, इट्स मोर पावरफुल देन यू थिंक. व्हाट यू हियर कैन टेक यू फार फ्रॉम हियर. Can move you to dance, to run, to tears. It's all in your ears. For advertising with the power to make your whole campaign work harder, start with commercial radio and audio, where brands are heard. CRA.au.
3: Enjoy a more restful night's sleep with Crown Posture Bedding, exclusive to 40 Winks. Proudly Australian made and owned, with a 30 to 90 day comfort guarantee on selected ranges. Endorsed by the Australian Physiotherapy Association, the Crown Physio range is thoughtfully crafted to provide exceptional support and comfort. Backed with a 10 year guarantee, Crown Posture Bedding stands the test of time. Try it for yourself at 40 Winks Cambridge. Open 7 days with plenty of free parking outside the door. 40 Winks, serious about sleep.
4: Last year, we had our work function at Hyperdrive, zooming around at 70 clicks with our butts 2 inches off the ground. Lots of races, old score seven, and best of all, bragging rights all year long. Plus, the awesome response of an electric motor, great track, electronic timing, plenty of snacks and drinks, bloody awesome day. Hyperdrive, for groups, corporates, families, or just you and a mate, best team building ever.
0: Now, back to the biggest variety from the 70s to now. 7HR River, 100% variety.